एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश।

साहि साहाण गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वसर्वनाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत तीन पवन भरपूर रहे ओ सोई अपन सरस कियो न जगत कोई आपुन आप ही उपाय सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर्व खो जंत फिरी अविनाशी अचल अजोनी संभो पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जीय मन त्यायाओ श्री गुर रामदास जयो जय जग मह तय हर परम पद पायो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाय उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नागहीर मन मिलत लेवलाइय फोन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शबद गुर त्याई अमृत प्रवाह छुटकंत साध द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सार संत सिख नाई नाम निर्वाण निधान हर उर धरहौ गुरु गुर गुर करहौ गुरु हर पाई नाम निर्वाण निधान हर उर धरहौ गुरु गुर गुर करहौ गुरु हर पाई सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय।

गुरमुख जल पावै सुख सहजी, हरिया पाई सुपाई। मन मुख भूखे दह दिस डोलै है,

रंग प्रंग अनेक न जापन करते उपा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरा कार्य आनंद वधाई तुद कार।

आई कोई ना हो न जाने मेरा, कृपा करो दीन के दाते मेरा गोने अब गणना विचारो कोई, माटी का क्या तोपे स्वामी मानस

की सरणा जेन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जाप ताप संजम तरम ना कमाया सेवा साधना जानया हर राया कहो नानक हम नीच करमा सारण परे की राख जाप ताप संजम तरम ना कमाया सेवा साध न जानया हर राया कहो नानक हम नीच करमा सारण परे की राख हो सरमा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबे ओ बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन कवाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत।

तदेह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत वेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहो विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, ओत पुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवात उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कौ एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई,

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कहें हम एक ना जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ। सब तो हे बखाने ओ दोहरा सगर द्वार का छाड़ का गहे ओ तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास।

हर जपियो उत्तम पाते आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाते नानक जान तुमरे शरणाए हर राख हो लाज पगाते आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाते।

0: मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जपन करत बा अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला तेरे कर नंद बधाई तुद कर मान मत्ता ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर दस जत कता नानक दसन दास उदया गए बिनवता श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दया खिलै सगल जग चंगियाइयां बुरियाइयां बच धर्म दूर।

0: गए मुसक्कत काल, नानक ते मुखे उजले खेती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुखे उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

सर्व सुख पावे मेरे मना। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तीना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतना

जहाँ हर सिमरन पया तह उपादगत कीनी। वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी। जप हर

अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की तू

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चात सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दया, खेले सगल जगत चंगियाँ।

महाराज श्री वाहिगुरु जी, जिन वड़ियाई तेरे नाम की, तेरे ते मन माहे, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाम।

0: नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी श्लोक महल्ला पहला। बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की एक रतना लागी वार। महल्ला दूजा, जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन कोरे अंधार। महला पहला।
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तलवार ज्यों सुंजे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो ना। पल गए भुल गए बपड़े, ही तन विच सुवाह पौड़िया।

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पवन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाहा विस्माद उज्जड़ विस्माद राहा।

0: जोगी सुनते हवन देते लख नाम करतार, सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतो को उपजे देने का विचार, दे दे मंग है सहसा गुणा सोभ करे संसार, चोरा जारा तकुड़ियारा खारा बवेकार, इखोंदा खाए चलया थाओ तिना पेका इकार, जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आया कार, ओए जे आखे सो तुहें जाने तिना पे तेरी सा, नानक भक्ता पुक्षलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंत्या पाशार महला पहला।
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, कहड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार।

0: मान ले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनीता है सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हरी स्वस्थ तिस तिस दीवाण पग नानक सच्चा नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लक ने किया चंगी आईया लक पुना प्रवान लक तप ऊपर तीर्था सहजो विवान लक सुतन संग्राम रण में सुटे प्राण लक सुती लग ज्ञान ध्यान पढ़ गए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखया अमर जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सच्चा सभी एक तू।

सवैये श्री मुख बाक्या महला पांजवां काची दे मोहन बांदी साठ कठोर कुचील को ज्ञानी

यह मीठी जी माहे हेताने बाल बांत शाप कार तो पावा पेखत सोंत प्राव अंतर जामी।

तारन तारन सम्राथ सब बेद कुल है समूह उदारन सा चेत चेत अचेत जान सत संगत भारम।

माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बैती जात रहदे ना बिचारो, रथ न असम न गज सिंह आसन, शिन में त्यागत नांग सिदारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कहु दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरह किशार, दीन दयाल पुरख प्रापूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत।

0: पान मीठा सुभोजन अंत की बार ओत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारी।
1: ब्रह्मा दीक्षित संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोज ते गोरख

प्रप्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुख।

आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूत।

0: प्रेम भगत उधर से नानक कर कृपा संत आप करियो है।
1: गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी, औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रबतारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण उदारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंद्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात रहो जन तूर लग, नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।
3: उद्यम कर लगे बहु पाटी बिचरे अनक शास्त्र बहु खटुआ, पसम लगाए तीरथ बहु प्रमते सुखम दे बंदे बहु जटुआ। बिन हर पयन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चकर करत सोमपा का अनिक पांत थाटे कर थटुआ।
4: सतगुर खे माताणिया जुग जूत समाणे, अन पाओ ने जा नाम टेक जित भगत अघाणे। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे।

0: जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देश पावै एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवै।
1: सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमाने नानक गुर अंगद।

पै फूले सोते दारा सेओ प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की।

पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्न काले, काट काट वासी सर्व निवासी, निरहित निरा नानक दास सदा शरणागत।

हान मखना छोड़ा जे हर प्रीतम प्राण आधारो गोर सत गोर कहे आजे साचा आगम विचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठो जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे

वड पागी हर हर गाया, श्रुत सिमृत गुण गावे करते, सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक शरण कृपानिध स्वामी, वड पागी हर हर गाया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राग सूही महला पंजवा, छंत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हौ संभल थकी जी, ओहो कदे न बोले कौरा।

0: का एक रथ एक रथवा हो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझै ताहे। सतजुग रस संतोख का धर्म गैरथवा हो त्रेतै रथ जतै का जोर गैरथवा द्वापर रथ तपै का सत गैरथवा कलयुग रथ गिन का कूड़ गैरथवा हो महला पहला।
1: स्वाम कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सब को सत समावेर कहे रहे प्रभु राम नाम देवा मैं सूर नाय लिये प्राच जाहे नान तो मुखंत्र पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में बेतर्पण हुआ नाव खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पड़े कुने तिन चार विचार पाओ पगकनी सदाई तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी।

0: जारिदय के सुधे जाहि महला पहला।
1: पाठ पुस्तक संध्या वादन सुलपुस भगत समादन मुख चोड़ पवखण सारंग कृपाल ते हाल विचारंग। गल माला तिलक लीला टंगो धोती बस पाटंगे जानस ब्रह्मं करमं सब फुक नहचो करमं कहो।

श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है, जस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे, सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जे। पंजां प्यारियां सोहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां, जिन्हां नाम जपिया वंड सगया, देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया, चरखरिया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत

0: अंतर पूजा पड़े कतेबा संयम तुरका पाय। छोड़ी ले पखंडा नाम लाया जाहे तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवा छुरी बगायन तिन गल ताग तिन कहर ब्राह्मण पूरे ना दो ना भी आवे ओई साथ। कूड़ी रास कूड़ा वा पार कूड़ बोल करे आहार।